लाओ भी दोस्तों अपने छोटे वीर रूपन कालों के संगीत विच कुछ वखरे अंदाज विच पेश करन जा रहे हैं पंजाब दे कुछ लोक बोलियां तो हड़ा अपना

कहर पैने ने वैरियां उत्ते एक दिन साड़ियां सबरां दे एक दूजे वल मूह ना रखे एना साड़ियां घबरां दे एथे नहीं ते हशर दिहाड़े सजणा गल्लां होणगियां नक्शे आप वहाणे ने मैं रब नू तेरिया जबरां दे सादिक इको नुक्ते पिछे महरम मुजरिम बनिया वा मतलब समझ के मैं की करने एना जेरां जबरां दे।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग, वेलकम बैक आफ्टर द हिट ऑफ द आवर सनराइज रेडियो 103.2 एफएम आप सुन रहे हैं राइट नाउ। मेरा नाम है अभी और आज इस सुबह मैं आपके साथ रहूंगा। वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल स्टार्ट ऑफ द वीकेंड। काफी सारे ब्यूटीफुल सॉन्ग्स मैं सिर्फ आपके लिए प्ले करने वाला हूँ, आपके लिए डेडिकेट करने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून्ड विद मी।

0: क्या आप किसी खास तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं तो उसे जना रेस्टोरेंट ब्रेडफर्ड में मनाएं।
1: बड़ी तकरीबात के लिए जना मार्की में 150 मेहमानों की गुंजाइश है। मेहंदी, निकाह, सालगिरह और खानदानी जश्न के लिए बेहतरीन।
0: छोटी गैदरिंग के लिए जना इवेंट सुइट में 50 मेहमानों की गुंजाइश है।
1: मौका कोई भी हो, लजीज खाने और अपनों के साथ अपनी खुशियों को यादगार बनाइए। जना रेस्टोरेंट, लीड्स रोड, ब्रेडफर्ड।
0: बुकिंग्स और मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 01274-733-732। जना रेस्टोरेंट, हर मौके को बनाए खास।
2: Have you tried Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Caratino Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking and is great for making healthy and delicious family meals. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.

0: इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Are you a business looking to make a real difference across our region? The Racial Equity Networking Dinner, REND Leeds Bradford, is seeking sponsors for its not-for-profit event on Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford. Connect with influential leaders from business, education and public service. Raise your organization's profile and demonstrate your commitment to race equity, inclusion and opportunity. For sponsorship opportunities, contact Shaheen today on 0770 6923 788. Official radio partner, Sunrise Radio.

0: और स्मोकिंग दोनों सेहत के लिए हानिकारक है।
1: Welcome back after yet another beautiful song on Sunrise Radio 103.2 FM. मेरा नाम है Abby and of course 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूँगा। मतलब Sunrise Radio आप काफी सारे मीडियम के थ्रू भी सुन सकते हैं। I hope आपको पता है। Well, DAB के जरिए आप सुन सकते हैं in Manchester. At the same time, दुनिया के किसी भी कोने में अपने सिर्फ हमारा app download करना है and then there you go. इंटरनेट के जरिए आप कहीं भी सुन सकते हैं। और जो हमारी वेबसाइट है ना, सो www.sunrisevideo.fm पे लॉगिन कीजिएगा। सारे अपडेट्स, अपकमिंग इवेंट्स, सब कुछ आप वहाँ पे देख सकते हैं। एट द सेम टाइम रेडियो का लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। सो कीप दैट इन माइंड एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू।

वेलकम बैक आफ्टर द क्लासिक फ्लैशबैक। मतलब ये कहना चाहता हूँ कि इन गानों को ना कोई भी नहीं बीट कर सकता, इसीलिए कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड। व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग यार, काफी एंजॉय किया मैंने और आई होप आपने भी एंजॉय किया होगा। Well, right now, मेरी और आपकी मुलाकात होगी खबरों के उस पार, विच इज आफ्टर द न्यूज और द बीम। ब्यूटीफुल गानों का सिलसिला चलता रहेगा, सो स्टे ट्यून्ड विद मी, आई विल सी यू ऑन द अदर साइड।

वेलकम टू येट अनदर ब्यूटीफुल हिट ऑफ द आवर सनराइज रेडियो 103.2 एफएम आप सुन रहे हैं राइट नाउ। इस गाने को अपने पसंद किया होगा ऐसी मैं आशा कर देता हूँ। मेरा नाम है एबी एंड ऑफकोर्स 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूँगा और इस आवर में भी पूरी कोशिश करूँगा कि आपका मनोरंजन किया जाएगा, अच्छे से गाने आपके लिए मैं प्ले करूँ। तो स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन सनराइज रेडियो 103.2 एफएम।

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कवर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 ब्रैडफोर्ड 7230303 जीरो।

once again, welcome back after yet another beautiful song only on Sunrise Radio 103.2 FM. आशा करता हूँ कि इस वीकेंड की शुरुआत आप काफ़ी enjoy कर रहे हैं. मतलब रिलैक्स भी करना चाहिए, रेस्ट भी करना चाहिए, पर कुछ चीज़ें ऐसी ही होती है कि हम वीकडेज में नहीं कर सकते, काम के टाइम पे नहीं कर सकते. सो आई थिंक एक लिस्ट अगर हम बनाते हैं ना, छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटे छोटे काम हो सकते हैं, अगर उन कामों को एक स्मॉल स्पेन ऑफ टाइम में अगर हम फिनिश करते हैं ना, तो पूरे हफ्ते के लिए आई थिंक हमें वरी करने की जरूरत नहीं. जस्ट अ थॉट. एंड ऑफ कोर्स द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू.

0: है यूपी बिहार।
1: वेलकम बैक आफ्टर द क्लासिक फ्लैशबैक ओनली ऑन सनराइज रेडियो 103.2 एफएम, नथिंग लाइक द गोल्डन ओल्डीज। पर राइट नाउ मेरी और आपकी मुलाकात होगी खबरों के उस पार, व्हिच इज आफ्टर द न्यूज़ और द बीइंग ब्यूटीफुल गानों का सिलसिला चलता रहेगा, कहीं ना आप जाइएगा। आई विल सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ दिस आवर, स्टे ट्यून्ड।

इस आवर के तीसरे घंटे में आपका स्वागत है एंड वेलकम बैक आफ्टर द हिट ऑफ द आवर. व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. सनराइज रेडियो 103.2 एफएम आप सुन रहे हैं राइट नाउ. ऑफ कोर्स मेरा नाम है अभी और आज 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा. दिस इज द सेकंड लास्ट आवर ऑफ माय शो. एंजॉय कीजिएगा इस वीकेंड की शुरुआत को, इस सुबह की शुरुआत को और सनराइज रेडियो पर प्ले हो रहे हैं इन गानों को. द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू.

0: अफसेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230 3030
2: Want your business to reach more customers and stay front of mind? Advertising with Sunrise Radio. Connect your brand with a loyal, engaged audience across Yorkshire and our growing DAB network. Radio builds trust, increases awareness, and gives your business repeated exposure throughout the day. And right now, as Sunrise prepares to expand even further, we're offering a limited-time special advertising package. Promote your business today with Sunrise Radio. Call 012-74735. 043

Welcome back after this beautiful song, only on Sunrise Radio 103.2 FM. काफी मधुर गाना था यार, I just loved it. Only on Sunrise Radio 103.2 FM पर आप सुन रहे हैं इन हसीन गानों को. मेरा नाम है Abby and of course 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा. अगला गाना सिर्फ आपके लिए है, dedicated.

शो के आखिरी घंटे में आपका स्वागत है। सनराइज रेडियो 103.2 एफएम ऑफ कोर्स आप सुन रहे हैं राइट नाउ। हीट ऑफ द आवर के बाद आपका है स्वागत वापस इस शो पर। मेरा नाम है अभी, 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा, विच मीन्स दिस इज द लास्ट आवर ऑफ दिस शो। कहीं ना जाइएगा, काफी सारा ब्यूटीफुल म्यूजिक आएगा इस आवर में भी। द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू।

0: बिन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: Do you ever wish your family's diet could be that little bit better? Then why not try Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Better ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking, so it's perfect for making all your favourite recipes. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।
2: Are you a business looking to make a real difference across our region? The Racial Equity Networking Dinner, REND Leeds Bradford, is seeking sponsors for its not-for-profit event on Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford. Connect with influential leaders from business, education and public service. Raise your organization's profile and demonstrate your commitment to race equity, inclusion and opportunity. For sponsorship opportunities, contact Shaheen today on 0770 6923 788. Official radio partner, Sunrise Radio,

Welcome back after this beautiful song. Sunrise Radio 103.2 FM आप सुन रहे हैं right now. This beautiful song है, मुझे भी बहुत पसंद आ गया. मतलब ऐसे गाने होते हैं कि सबको कभी कभी पसंद नहीं आते हैं, पर you know, you just started falling for this song. So this was one for me. और इसी नोट पर अगला गाना सिर्फ आपके लिए डेडिकेट किया जाता है.

0: part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
1: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
0: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
1: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
2: Official media partner, Sunrise Radio.
3: गलियां घूमी ते पैरां दी जुत्तियां भी कसी गईं पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
4: ओहो ते तुसां चाचे कोल जाओ ना।
3: चाचा केड़ा चाचा?
4: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्नाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकनती लाए सिर्फ 2 पौंडां ना कन्न सलाने ना 1 पौंड छापां ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसां पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
3: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
4: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
5: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane, where were you when you first heard this?
6: Khoobsurat hasi, o meri zora zameen, aashiq ke dilon ko dhadkati aayi.

वेलकम बैक टू द क्लासिक फ्लैशबैक ओनली ऑन सनराइज रेडियो 103.2 एफएम। मेरा नाम है अभी और आज इस सुबह 7 बजे से मैं आपके साथ था। काफी मजा आ गया मुझे और मैं आशा करता हूँ कि आपको भी काफी मजा आ गया इन गानों को सुनकर। वेल राइट नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू गो क्योंकि द नेक्स्ट प्रेजेंटर विल बी विद यू। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, योर फैमिली, योर लव्ड वंस और मेरी और आपकी मुलाकात होगी हमारे अगले शो पर। टिल देन अपने वीकेंड को एंजॉय कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर्स का ख्याल रखिएगा, उनका हाल चाल पूछिएगा। गुड बाय।

0: हजारों दुआओं, मोहब्बतों, चाहतों और खुशियों के लाजवाल खजानों की ख्वाहिश के साथ तमाम सुनने वालों को अस्सलामुअलैकुम, हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड सत श्री अकाल। क्या हाल है जनाब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अपना वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे। जी हाँ, वीकेंड तो बड़ी कीमती चीज़ होती है जी, क्या कहा जाए। पूरा वीकेंड का इंतज़ार होता है। बल्कि मैंने एक कुछ दिन पहले कहीं से कुछ पढ़ा और मैंने अपने वर्क के ग्रुप में, अपने काम के ग्रुप में सेंड किया कि इस साल की समझ नहीं आ रही है, तो इंग्लिश में था, आई कांट अंडरस्टैंड दिस ईयर, एवरी टू मिनट्स इस मंडे, समझ नहीं आती, अभी थकन उतरी नहीं होती और दोबारा मंडे आ जाता है। बट एनीवेज, आई होप यू वुड हैव बीन एंजॉयिंग, आप अपना डे एंजॉय कर रहे होंगे, अपना वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे। जनाब, आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो, मैं हूं आपकी मेज़बान नाहिद चट्ठा। सनराइज रेडियो पे आप मुझे सुनते हैं एवरी सैटरडे फ्रॉम 11 to 2, यानी कि 11 से 2 बजे तक। हमारे प्रोग्राम में क्या होता है जनाब, अच्छी अच्छी सी बातें होती हैं, कुछ शायरी होती है, गीत होते हैं, बेसिकली ये है तो गीतों का ही प्रोग्राम। लेकिन जो लास्ट आवर होता है वो हमारा डिस्कशन आवर होता है, जिसमें हम किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं, आप अपने अच्छे अच्छे ख्यालात का इजहार करते हैं, लाइव आकर भी करते हैं, और जो लोग लाइव नहीं आना चाहते वो मुझे फ़ोन करके अपने ख्यालात बता देते हैं और फिर मैं उनको अपनी आवाज़ में आप तक पहुंचा देती हूं। जी सामिन, ये तो हमारे प्रोग्राम में होता है। लास्ट प्रोग्राम में मैंने अनाउंस किया था कि हमारे साथ एक डॉक्टर मौजूद होंगी जो कि हमें एडिक्शन पे बात करेंगी। वो नारकोटिक्स की डॉक्टर हैं, जो लोग नशे वगैरह की लत में आ जाते हैं और फिर वो बताती हैं कि क्यों, कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, आपकी फैमिली में कोई है जो इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहा है, अपने बच्चों पे किस तरह से नज़र रखें, अगर कोई हो गया है तो क्या क्या मदद कहाँ कहाँ से आप ले सकते हैं, और उसको अगर आप बेसिक स्टार्ट में घर से भी ट्रीट करना चाहें अपने एटीट्यूड से कैसे कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आज नहीं आ पाएंगी क्योंकि उनको किसी कॉन्फ्रेंस पर जाना पड़ा, लेकिन जल्द ही वो हमारे साथ होंगी। जब होंगी मैं आपको ज़रूर इतला दे दूंगी। बल्कि उनकी, जैसे मैंने बताया था कि डॉक्टर निगहत नसीम, उनका मैंने आपको कुछ तारुफ भी करवाया था, लेकिन जब उन्होंने आना होगा जिस स्टेट को, तो मैं आपको उससे पहले उनका तारुफ करवाऊंगी। उनके तारुफ में ही 10 मिनट लग जाते हैं। आज ही उनकी लिखी हुई बुक मुझे मिली, 21 किताबों की मुसन्निफा हैं, पाकिस्तान फैसलाबाद से उनका ताल्लुक है और माशाल्लाह से वो पूरी दुनिया में अपनी कामयाबियों के, अपनी जहानत के झंडे गाड़ रही हैं। अपना चैनल है उनका, वो किताबें लिखती हैं, वो हॉस्पिटल भी जाती हैं, वो सोती कब हैं और खाती कब हैं ये समझ नहीं आती, मेरी बचपन की फ्रेंड है। तो आई एम सो प्राउड ऑफ हर। आज ही उनकी नई किताब मुझे मिली है, विरासत, उनके अफसानों की किताब है, और आज ही मुझे सुबह ये मौसूल हुई है। तो इंशाल्लाह आपकी ज़रूर उनसे मुलाकात करवाएंगे, और जैसे ही वो अवेलेबल हों, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चाहूँगी कि वो हमारे लिसनर्स को ऐसी नॉलेज फ्राहम करें जिसकी वजह से हम कोई फ़ायदा उठा सकें। अपनी ज़बान में बहुत ही खूबसूरत बात करती हैं, तो इंशाल्लाह उनसे आपकी मुलाकात होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनसे रात मेरी बात हुई और उन्होंने बहुत माजरत की, तो वो कह रही थी कि वो जल्द ही आएंगी, और ना सिर्फ एडिक्शन पे बल्कि उसके अलावा भी वो बहुत से हमारे साथ प्रोग्राम्स करेंगी, एज अ मेहमान आएंगी और हमें बहुत बहुत चीज़ों से आगाही देंगी। ऐसा करते हैं कि तारुफ़ ज़रा लंबा ही हो गया जनाब प्रोग्राम का, तो हम बढ़ते हैं अपने हिट ऑफ द आवर गीत की जानिब। आप सबको मिलाद की बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो। रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, बरकतों वाला महीना, खूबसूरत महीना। दिल नहीं चाहा कि गाने से इब्तदा करूं, सोचा कि तेरे रंग रंग हिट ऑफ द आवर, तमाम सुनने वालों के नाम इस हम्द से, इस प्रोग्राम की इब्तदा करते हैं तो फिर बाद में जा जाएंगे अपनी आई थे फिर अपने गाने शाने सुनते रहेंगे लेकिन चलो थोड़ा एहतराम तो बनता है जी बिल्कुल हम हमारे दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ज़्यादा एहतराम है हम कुछ दफ़ा शो करा देते हैं कई बार हम शो नहीं करा सकते जो गलतियां हो जाती हैं उनको अल्लाह पाक माफ़ फरमाए हम सबसे तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हिट ऑफ द आवर सुनते हैं हिट ऑफ द आवर में जनाब सुनते हैं हम्द इब्रारुल हक की आवाज़ में तेरे रंग रंग एंजॉय कीजिएगा
1: The hit of the hour is brought to you by Sophie Jewelers with a wide range of designs of all kinds of jewelry Sophie Jewelers, 119-21-21, Oak Lane, Bradford 9. Call 01274-056-014.

0: मैं जहाँ भी जाऊँ दुनिया में तेरे जलवे मेरे संग संग। बहुत ही खूबसूरत हमदिया कलाम आपने सुना इब्रारुल हक की आवाज़ में। जनाब इस वक्त हम करते हैं टाइम चेक और टाइम चेक के बाद हम बढ़ेंगे अपने कमर्शियल ब्रेक की जानेब।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: टाइम इस वक्त हुआ जाता है जी हमारे स्टूडियो की घड़ियों पे 11:16 यानी कि 11:16। हीरा खान जी, इस हम के दौरान आपसे बात हुई, बहुत अच्छा लगा आपकी खैरियत जानकर। हम कमर्शियल ब्रेक के बाद आपके तमाम दोस्तों के नाम गीत ज़रूर प्ले करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया टेलीफोन कॉल करने का। बढ़ते हैं कमर्शियल ब्रेक की जानेब। बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
2: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
2: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
3: ऋषि's विजन प्रेजेंट्स आनंद मूर्ति गुरुमा इन लंदन। लर्न टाइमलेस योगिक विजडम डायरेक्टली फ्रॉम द रिवर्ड मास्टर। जॉइन अ 3-day सीरीज ऑफ इनलाइटनिंग टॉक्स ऑन योग सूत्रास फॉर रियलाइजिंग द ट्रू सेल्फ, 11th to 13th September 2026। लाइफ चेंजिंग सेशंस फीचरिंग प्रोफाउंड टॉक्स, practical insights and powerful meditations at Hariben Bachubhai Nagrecha Hall, 202 Leighton Road, London, E151DY, on Friday 11th and Saturday 12th September, 6 p.m. to 8 p.m. and Sunday 13th September, 3 p.m. to 5 p.m. Free event, all are welcome. For more details call AK Basra, 07977201226, Mirdosh Kumar, 07899055525, Gurkirit, 07886545970, Usha, 07931788062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

जी हाँ सामिन, वेलकम बैक जी। अब हम सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत हीरा खान साहब की फरमाइश पर, उन तमाम दोस्तों के नाम जो कि हीरा साहब के दोस्त हैं और हम सब सनराइज रेडियो के भी दोस्त हैं जी। तमाम हीरा खान साहब की फरमाइश पर यह गीत है, आपसे हमें प्यार हो गया है। जी हाँ।

आपसे हमें प्यार हो गया है और जीना भी दुश्वार हो गया है जी, सब कुछ हो गया है। क्या कहते हैं ना, जब मुयस्सर थे मोहब्बत के सहारे कुछ दिन, जब मुयस्सर थे मोहब्बत के सहारे कुछ दिन, हाँ बड़ी ऐश में गुजरे थे हमारे कुछ दिन। सच कहा इश्क में नुकसान हुआ दोनों का, सच कहा इश्क में नुकसान हुआ दोनों का, मेरी एक उम्र गई और तुम्हारे कुछ दिन। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत ये चंद अशआर तो एनजी होंदा है जी जिन्हें कीती होंदी है उन्हें पता चलता है। तो ऐसा करते हैं, बगैर कोई टाइम वेस्ट किए अगले गीत की जानिब बढ़ते हैं और फिर उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने कमर्शियल ब्रेक की जानिब। आते जाते जो मिलता है सोनू निगम की आवाज़ में सुनते हैं।

0: जी समीन वेलकम बैक। क्या किया जाए जनाब, ऐसा है कि आपने एक गीत सुना और इससे इस दौरान हमें दो कॉल्स मौसूल हुए जी, सायरा जी ब्रेडफुट से और यास्मीन साहिबा, आप दोनों के टेलीफोन कॉल्स मौसूल हुए। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने कहा कि यास्मीन साहब आपने कहा एक ख़ास नात की फरमाइश की है आपने उसके मिलाद के मुबारक महीने के हवाले से। जी मैं कोशिश करती हूँ कि ज़रूर आपके लिए वो नात ढूंढूं, अगर मिल गई तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं कोई और अच्छी सी आपके लिए, नातें तो सभी अच्छी होती हैं, तो कोई भी एक लगा दूंगी। पंजाबी की आपने कहा था तो पंजाबी की ही ढूंढूंगी। और इसके अलावा सारा जी बहुत ही खूबसूरत गीत मज़े का है, आपके लिए लगाना तो है, लेकिन मसला कुछ इंज है कि हमारे कोल साढ़े कोल टाइम थोड़ा वे क्योंकि टाइम चेक करने का टाइम है, तो उस तो बाद कमर्शियल ब्रेक का टाइम है, तो उस तो बाद होएगा जी पुराना गीत फ्लैशबैक, तो थोड़ी देर तो इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं थोड़े वास्ते बहुत चंगा गीत ढूंढ के रखे आया है, तो सब तो पहले इस तरह करने टाइम चेक करने एंड उस तो बाद बदने अपनी कमर्शियल ब्रेक की जाने, कमर्शियल ब्रेक तो बाद होगा पुराना गीत।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं कि हुआ चाहते हैं 11:43 यानी के 43 मिनट, यानी के 43 मिनट्स पास्ट 11। बढ़ते हैं हम कमर्शियल ब्रेक की जानिब। कमर्शियल ब्रेक के बाद होती है जी आपसे दोबारा मुलाकात एक गीत के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
1: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
2: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
1: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
2: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923788.
3: Official media partner, Sunrise Radio.
4: Something new is cooking at Jinnah Restaurant. Come and discover our exciting new menu, packed with even more flavors and dishes to enjoy. Try our signature favorites, including Kashmiri Dampukhat, Desi Fried Fish, Desi Style Chooza, and Namkeen Gosht. Plus, discover our new lunch menu with delicious dishes at great prices. Bring your family and friends and experience the new menu today. Jinnah Restaurant, 109 Leeds Road, Bradford. To book, call 01274-733-732. Jinnah Restaurant. Tradition, taste, and something new.

0: अरे सैया किया ये बुरा काम तूने, कोरे कागज पे लिख दिया नाम तूने, बड़ी गल है जी, इसमें कौन सा बुरा काम है। एनीवे बहुत बड़े बड़े बुरे काम होते हैं, कागज पे नाम लिखने से कौन सा बुरा काम होता है। वैसे अपना अपना शिकायत करने का अंदाज है। हाँ जी, तो ऐसा करते हैं कि हम ये तो गीत हमने लगा दिया था सारे जी आपके लिए, होना चाहिए था फ्लैशबैक गीत। फ्लैशबैक का हम अभी जिंगल आपको सुनाते हैं और फिर हम नदीम भाई, नदीम मंसूर साहब से अब बात हुई, बहुत अच्छा लगा। आपके लिए आपकी फरमाइश का गीत है जनाब, दुआ है, किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत सुनिएगा फ्लैशबैक के तौर पे।
1: The classic flashback is brought to you by Chacha Jewelers Bradford. Choose from a wide range of jewelry. Chacha Jewelers, 97-99, Oak Lane, Manningham, Bradford. BD9 4QU. Call 01274 488 935.

0: वेलकम बैक सामिन। आपने सबसे पहले खबरें सुनी, फिर आपने क्या सुना जी, आपने कमर्शियल ब्रेक सुनी और इस दौरान हमारी बात हुई हमारे बहुत ही प्यारे भाइयों से जी, जिनमें भाई तारिक जुल्फी जी हैं और भाई चौधरी रुखसार साहब हैं। आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा फैमिली वाली फीलिंग आती है कि सारे भाई बहनें इतने अच्छे से बात करते हैं, इतना प्रोग्राम को सराहते हैं, बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि जैसे मैं अपने मेके में आ गई हूँ। तो ऐसा करते हैं कि एक दो फिर याद दिला दूँ आपको। आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो 103.2 FM पर, और जो बाकी लिस्ट है जी, आपको पता है कि आप हमें डैप पर भी सुनते हैं, आप हमें ऑनलाइन भी सुनते हैं, और हम जल्द ही वेस्ट लंदन में और डाबी में भी लॉन्च करने वाले हैं। जल्द ही हमारी नशरियात सुनी जाएंगी और वैसे तो पूरी दुनिया में सब सुनते हैं। मेरा नाम है नाहिद चट्ठा और मेरा और आपका साथ जनाब रहता है एवरी सैटरडे फ्रॉम 11 टू 2, यानी कि 11 से 2 बजे तक हवा की दोस्त पर हमारी आवाज़ अपने रंग बरंगी गानों से भरे हुए प्रोग्राम को लेकर आपके कानों पर लैंड करती है। और आप ये प्रोग्राम सुनते हैं तो ऐसा है कि प्रोग्राम में, जैसे मैं बताती थी लास्ट शो में, मैंने कहा था कि इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान डॉक्टर निगत नसीम हमारे साथ मौजूद होंगी, वो इस प्रोग्राम में नहीं आ पाएंगी, बल्कि इसी दौरान मैंने उनको उनकी डेट ली दोबारा से, बिकॉज़ उनको किसी कॉन्फ्रेंस पे जाना पड़ गया जो कि वो कुछ काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रही थी, और उन्होंने बहुत ज़्यादा माजरत की और उन्होंने कहा कि वो 12 सितंबर को हमारे साथ मौजूद होंगी, जिसमें हम एडिक्शन पे बात करेंगे। बहुत ही सर हासिल गुफ्तगु होगी, बहुत ही नॉलेज से भरा हुआ वो प्रोग्राम होगा। तो आज वो नहीं मौजूद होंगी, तो उनका वैसे मैं आपको थोड़ा सा, उनकी जो नई बुक आई है उससे थोड़ा सा तारुफ भी मैं आपको करवा दूंगी इस प्रोग्राम में और नेक्स्ट प्रोग्राम में, उसके बाद फिर बात होगी। जनाब यास्मीन बहन, आपकी टेलीफोन कॉल आई थी और आपने जिस नात की फरमाइश की थी, आई एम सॉरी वो नात तो हमारे पास मौजूद नहीं है। हिट ऑफ द आवर के तौर पर मैं आपकी खिदमत में एक और नात पेश करती हूँ। ये फरमाइश है जनाबा यास्मीन साहिबा की, और उनकी फरमाइश पर ये खूबसूरत नात बस मेरा माही सल्ले अला, आप सुनिएगा, एंजॉय कीजिएगा, और इसके बाद दोबारा मुलाकात होगी भाई चौधरी रुखसार साहब आपके लिए और तारिक जुल्फी जी आपके लिए और आपके दोस्तों के लिए बाद में गीत। पहले ज़रा प्रोग्राम द आवर द शुरू ज़रा नात नाल कर लिए ना, अच्छे बच्चे बन जाइए, बाद में देखने गाने शाने। तो बढ़ते हैं हिट ऑफ द आवर की जानिब, जो कि एक नात है बहन यास्मीन की फरमाइश पर।
1: The Hit of the Hour, brought to you by Hope Yorkshire. Telephone 0800 015 7866.

0: बस मेरा माही सल्ले अला। ये तो जी हमने नात शरीफ सुनी जो कि हिट ऑफ द आवर के तौर पर थी और ये हमारी लिसनर यास्मीन साहिबा की फरमाइश पर थी। तो यास्मीन साहिबा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये ट्रैक और भी जो मेरे लिसनर्स हैं उन्होंने भी पसंद किया होगा। हमारी बात हुई इस दौरान एक बहुत ही अच्छे कॉलर और जो पहले हमारे प्रेजेंटर हुआ करते थे जनाब अनवारुल हक साहब से, बहुत ही खूबसूरत आवाज़, बहुत ही अच्छा अंदाज और उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनवारुल हक भाई आपकी टेलीफोन कॉल का। ऐसा करते हैं कि हम आपको अगले ट्रैक पर ले जाने से पहले, क्योंकि टाइम होने वाला है कमर्शियल ब्रेक का भी और आपको टाइम चेक भी करना है हमें, तो ऐसा करते हैं कि चंद अशआर सुना देते हैं क्योंकि गीत प्ले करने का टाइम नहीं है। तो अशआर कुछ यूं हैं, मैंने देखा था उन दिनों में उसे। अब सारे अपनी अपनी जवानी याद कर लें, फौरन अपने नॉब्स जो हैं जवानी पर सेट कर लें और ट्यून इन कीजिए जवानी पे। मैंने देखा था उन दिनों में उसे जब वो खिलते गुलाब जैसा था, उसकी पलकों से नींद छनती थी, उसका लहजा शराब जैसा था, उसकी जुल्फों से भीगती थी घटा, उसका रुख महताब जैसा था, लोग पढ़ते थे खाल व खद उसके, वो अदब की किताब जैसा था, बोलता था जबान खुशबू की, लोग सुनते थे धड़कनों में उसे, मैंने देखा था उन दिनों में उसे। हुन को की हाल हो गया ये पता नहीं है, कोई गारंटी नहीं है क्योंकि हम जब अपनी पुरानी फोटोज़ देखते हैं तो कहते हैं असि इस तरह भी दिखते सी कभी तो ये उन दिनों की बात है, मैंने देखा था उन दिनों में उसे। तो भाई साहब आपसे गुजारिश है कि इन दिनों मत देखिएगा, उन दिनों की याद ही रखिएगा, क्या ख्याल है जनाब। बढ़ते हैं टाइम चेक की जानिब और उसके बाद होती है आपसे कमर्शियल के बाद दोबारा मुलाकात, पहले टाइम चेक।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: जी जनाब, हमारी स्टूडियो की घड़ियां कह रही हैं, बता रही हैं, चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं कि हो चुके हैं 12:15 यानी कि 12:15 15 minutes past 12। जी बढ़िएगा कमर्शियल ब्रेक की जानिब, मिलते हैं इसके बाद, हमारे साथ रहिएगा।
2: कुल्लू नफसेन जायकातुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक, गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं, टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी है, टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 दास ब्रेडफोर्ड 7230।
4: क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सारिफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है। यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात और मजीद इलाकों में बहुत जल्द। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 012-747-35043।

तुम मुझे देखकर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देखकर गीत गाता रहूं। क्या ही खूबसूरत गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आपने सुना। जनाब, अगला गीत जो है वो है जी चौधरी मुजफ्फर जी, आपकी फरमाइश पर। ऐसा है कि चौधरी मुजफ्फर जी, आपकी फरमाइश पर नाहिद अख्तर की आवाज़ में ये गीत हम आपसे बात कर रहे थे तो कुछ कॉल्स मिस हो गई आयशा जी की और ख्वाजा मोहम्मद अकरम साहब की। ख्वाजा मोहम्मद अकरम साहब, मैंने आपकी कॉल पिक की थी लेकिन वो ना मुझे आपकी आवाज़ आ रही थी ना आपको मेरी आवाज़ आ रही थी, मुझे नहीं लग रहा था कि मेरी भी आवाज़ आपको जा रही है। मैं हेलो करके फिर मैंने बंद कर दिया, तो आई एम सॉरी, मुझे लगता है लाइन में कुछ प्रॉब्लम ना हो गई हो। एनीवेज, ऐसा करते हैं अगले गीत की जानिब बढ़ते हैं नाहिद अख्तर की आवाज़ में, मेरी नहीं वो पुरानी वाली नाहिद अख्तर की आवाज़ में। ये खूबसूरत सा गीत आपकी समातों की नज़र चौधरी मुजफ्फर साहब की जानिब से तमाम उनके दोस्तों के नाम। इंजॉय कीजिएगा।

0: बात हुई। आपका जो गीत है वो डेफिनेटली कमर्शियल ब्रेक के फौरन बाद प्ले किया जाएगा और उम्मीद है आप उसको पसंद करेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले आपको चंद अशआर सुनाती हूँ, उम्मीद है आप पसंद फरमाएंगे। जान होते हुए बेजान बुरे लगते हैं, खुश अदा लोग परेशान बुरे लगते हैं। अच्छी लगती हैं मुझे नील गूं आंखें, लेकिन इनमें ठहरे हुए तूफान बुरे लगते हैं। तेरी रहमत से तो इनकार नहीं है मौला, शेर सुनिएगा बहुत खूबसूरत। तेरी रहमत से तो इनकार नहीं है मौला, जेब खाली हो तो मेहमान बुरे लगते हैं। मैंने एक शख्स को क्या जीत के हारा अफरी, अब मुझे खेल के मैदान बुरे लगते हैं। जी हाँ, बढ़ते हैं कमर्शियल ब्रेक की जाने, और कमर्शियल ब्रेक के बाद होती है आपसे इस खूबसूरत गीत के बाद दोबारा मुलाकात। हमारे साथ रहिएगा, सुनते रहिएगा सनराइज रेडियो। सनराइज
1: रेडियो। Looking for a quality home to rent?
2: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
1: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
3: Rishi's Vision presents Anand Utsav with Anand Murthy Guruma in Birmingham. Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A 3-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026. 3 enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6, Junction 7, Chapel Lane, Birmingham, B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details, call Benny 07901 831 165. Raman 078 341 77866. Usha 0793 178 8062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

धीरे धीरे से दिल को चुराना, इतने धीरे धीरे से नहीं जी। भाई ख्वाजा मोहम्मद अकरम, आपकी फरमाइश पर यह गीत आपने सुना आशिकी फिल्म से। उम्मीद है आपने इंजॉय किया होगा और तमाम सुनने वालों ने भी इंजॉय किया होगा। अगला गीत जनाब हमारी बहुत बहुत बहुत स्पेशल, हमारे दिल के बहुत करीब लिसनर आंटी जीत कौर जी तुहाडे लई। तुसी टेलीफोन कीता, तुहाडे नाल गल करके बहुत चंगा लगे आंटी जी। तुसी सानू याद करदे हो, फोन करदे हो, सच मनो दिल नू बहुत बहुत बहुत चंगा लगता है। तो ये जड़ा गीत है तुहाडे वास्ते स्पेशल, तुहाडी तरफों साड़ी तरफों तुहानू ते तमाम सुनन वालियां नू पंजाबी दा गीत है जनाब। ए सारी खेड नसीबां दी, ते ए खलील हैदर साहिब दी आवाज़ च। गीत तो पहले तुहानू एक शेर सुना दा, पंजाबी दा गीत है तो पंजाबी दा शेर तो बनता है ना। यक लख्त विछोड़ा औखा है, यक लख्त विछोड़ा औखा है, चन मेरी मन कुछ किस्तां कर, चन मेरी मन कुछ किस्तां कर, यार यक लख्त विछोड़ा औखा है, चन मेरी मन कुछ किस्तां कर। जी हाँ, इस शेर के बाद आपको लिए चलती हूँ एक खूबसूरत से पंजाबी गीत की जानिब। हमारे साथ रहिएगा, सुनते रहिएगा सनराइज़ रेडियो।

0: सारी खेड नसीबां दी तू हसना ते मैं रोना है जी नसीब बदले भी जा सकते ने तुसी बदल सकते हो नसीब बदलना अपने हाथ विच होंदा है की ख्याल है नसीब दी गल हो रही है ते नसीब दे बारे चंद शार साड़ी अपनी किस्मत माड़ी है साड़ी अपनी किस्मत माड़ी है तू ना घबरा मैं राजी हाँ मैं उजड़ गया ते कोई गल नहीं तू जश्न मना मैं राजी हाँ जनाब इसके साथ ही हम करते हैं टाइम चेक और टाइम चेक के बाद हमारी कमर्शियल ब्रेक और कमर्शियल ब्रेक के बाद फ्लैशबैक गीत
1: सनराइज रेडियो योर साउंडट्रैक योर टाइम चेक
0: इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ियां बता रही है कि हुआ चाहते हैं 12:45 यानी कि 45 मिनट्स पास्ट 12 यानी कि पौना एक यानी कि क्वार्टर टू वन बढ़ते हैं कमर्शियल ब्रेक की जानिब मिलते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद गीत के बाद हमारे साथ रहिएगा
2: सनराइज रेडियो तेरी
3: गलियां कुमी ते पैरें ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया
4: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना
3: चाचा केड़ा चाचा
4: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नतीला है सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने
3: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता
4: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935
5: Free courses at Shipley College. Free teaching assistant courses. Free health and social care courses. Free childcare courses. Free business and digital skills courses. Want a good job? Want to earn more money? Want to make your family proud? You can learn for free at Shipley College, subject to eligibility. No qualifications. Didn't go to school in the UK? Go to the Shipley College website.
6: Classic hit of the hour brought to you by Sunrise Radio Gold, taking you down memory lane with non-stop classic hits from 50s to the 90s. SunriseRadioGold.com.
7: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane, where were you when you first heard this?

तेरे नैना है जरा बेईमान से। जी बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना फ्लैशबैक के तौर पर। इसके बाद चंद अशआर तो बनते हैं अगले गीत पर जाने से पहले। जी हाँ, उसको ये है जी अशआर आपको पसंद आएंगे। उसको फुर्सत ही नहीं वक्त निकाले मोहसिन, उसको फुर्सत ही नहीं वक्त निकाले मोहसिन, ऐसे होते हैं भला चाहने वाले मोहसिन। याद के दश्त में फिरता हूँ मैं नंगे पाँव, देख तो आके कभी पाँव के छाले मोहसिन। खो गई सुबह की उम्मीद और अब लगता है हम नहीं होंगे जब होंगे उजाले मोहसिन। खाक को भी नहीं पहुंचेगा कोई करबला की, अब भले एक जहां खून में नहा ले मोहसिन। हाकिम वक्त कहां मैं, कहां अदल कहां, क्यों न खलकत की जबां पे लगाएं ताले मोहसिन। वो जो एक शख्स मताए दिलो जान था न रहा, अब भला कौन मेरे दर्द संभाले मोहसिन। उसको फुर्सत ही नहीं वक्त निकाले मोहसिन, ऐसे होते हैं भला चाहने वाले मोहसिन। जी हाँ, अगले गीत की जानिब बढ़ते हैं। तुम दिल की धड़कन में रहते हो कुमार सानू की आवाज़ में, इंजॉय कीजिएगा।

0: दिल की धड़कन में रहते हो। उम्मीद है आपने ये गीत पसंद किया होगा, बहुत ही खूबसूरत गीत था, मैंने भी बहुत इन्जॉय किया। अब जनाब हालात कुछ यूँ हैं कि हम बढ़ रहे हैं इस आवर के एंड की तरफ, यानी कि हम न्यूज़ ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। एक डेढ़ मिनट बाकी है, गीत प्ले नहीं कर सकते, आपको चंद अशआर सुनाते हैं, उसके बाद न्यूज़ ब्रेक की तरफ जाएंगे। हमेशा साथ रहने की आदत कुछ नहीं होती, जो लम्हे मिल के जी लो रियाजत कुछ नहीं होती, जिसे महरूमियाँ मिली हों वही जान सकता है, जिसे महरूमियाँ मिली हों वही जान सकता है, ज़बानी हौसला झूठी मुरव्वत कुछ नहीं होती। कई रिश्तों को जब परखा नतीजा एक ही निकला, ज़रूरत ही सब कुछ है मोहब्बत कुछ नहीं होती। किसी ने छोड़ के जाना हो तो छोड़ ही जाता है, बिछड़ना हो तो फिर सदियों की रफाकत कुछ नहीं होती। ताल्लुक टूट जाए तो सफीने डूब जाते हैं, ताल्लुक टूट जाए तो सफीने डूब जाते हैं, ये सब कहने की बातें हैं हकीकत कुछ नहीं होती। हमेशा साथ रहने की आदत कुछ नहीं होती, यही गल्ला बनाइया ने लोगों ने, है ना। तो जनाब हम बढ़ रहे हैं न्यूज़ ब्रेक की जानिब। न्यूज़ ब्रेक के बाद प्रोग्राम के लास्ट आवर में आपसे होती है दोबारा मुलाकात। हमारे साथ रहिएगा, सुनते रहिएगा सनराइज रेडियो। और मोहम्मद बशारत जी, बहुत शुक्रिया आपकी टेलीफोन कॉल का। जो हिट ऑफ द आवर गीत होगा वो हम करेंगे आपके नाम, इन्जॉय कीजिएगा।
1: Broadcasting to the Asian community 24 hours a day, this is Sunrise Radio. On the hour, every hour, this is Sunrise Radio Network News.
2: From the Sky News Centre at 1. Thousands of people are still missing after deadly flooding in Nepal, with 33 British nationals among those unaccounted for. More than 600 have died. Matt Baden works for the International Federation of the Red Cross and tells us what they're currently focusing on.
3: Right now, it's about the next 72 hours, which will be food, water and non-food items. Shelter will certainly be a huge priority. And once we can kind of establish those emergency needs, we'll likely move into other forms of programming to support livelihoods, getting people back into a more permanent shelter.
2: A migrant has died and three have been injured trying to cross the channel in an overcrowded dinghy. The French Coast Guard rescued 72 people in the waters between Dunkirk and Calais on Thursday night. The Archbishop of Canterbury says she's sad and shocked after a man died at a Christian festival in West Sussex yesterday. Six others were injured after a sign fell down at the Big Church Festival near Stenning. Dame Sarah Mullally says she's praying for the man's family, friends and loved ones. Middlesbrough fans have held a minute's applause to pay tribute to two police officers who were killed in a head-on collision last weekend. PC Matthew Blades and PC Tom Clough died in the collision on the A66 near the town, alongside five other men. In sport, Andoni Iriola's first game at home at Liverpool manager is against Nottingham Forest. Shane Pennington's at Anfield.
4: There's Liverpool 0, Nottingham Forest 1. And before kick-off here, Liverpool paid tribute to Kevin Keegan with a minute's applause. But so far on the pitch, they've not really got going here, and they're behind courtesy of Dan and Doyle's 18-yard strike. He fired low across Alisson into the bottom right corner. It's what the visitors deserve, with Doyle and Jesus missing other good opportunities for Oliver Glasner's side. It's Liverpool 0, Nottingham Forest 1.
2: Shane, thank you. Later in the Premier League, newly promoted sides Coventry and Hull face off. And rains delayed England's victory push on day three of the second test against Pakistan at Lords. The hosts will resume on 81 for three in their second innings, a lead of 261. That's the latest. I'm Jenny Barsby.
0: जी हाँ, वेलकम बैक सामीन। हम प्रोग्राम के लास्ट आवर में दाखिल हो चुके हैं। लास्ट आवर जी हमारा होता है डिस्कशन आवर। अगर आप कोई बात करना चाहते हैं हमारे टॉपिक पे, तो टॉपिक ये है, हमें अपनी पिछली यादों को, जब ये जो दुखी दुखी से गीत बता रही थी, सुना रही थी, मैं ज़रा और शायरी में आपको थोड़ा सा प्रिपेयर कर रही थी कि जो हमारी जो पिछली यादें होती हैं, समटाइम्स दुखी यादें होती हैं और वो हमें दुखी कर देती हैं, हमें डिप्रेशन में ले जाती हैं, हमें किस तरह से उनसे छुटकारा हासिल करना चाहिए, क्या हमें वो बातें याद रखनी चाहिए लेकिन जब भी याद करेंगे दुख होगा, या फिर हमें वो बातें मुकम्मल तौर पे भुला के मूव ऑन करना चाहिए, लेकिन अगर हमने मूव ऑन कर लिया तो हमारे लेसन्स जो लर्न किए होते हैं उसको हम किस तरह से रखेंगे। आपकी गीत तो चलते रहेंगे लेकिन आपकी बातों का इंतज़ार रहेगा, ज़रूर बताइएगा कि क्या करना चाहिए। तो बढ़ते हैं हम अपने हिट ऑफ द आवर गीत की जानिब। एक दफ़ा फिर से याद दिला दूँ, आप सुन रहे हैं सनराइज़ रेडियो 103.2 FM पर, और आप हमें डैप पर भी सुन रहे हैं, ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, मोबाइल टेलीविज़न टैबलेट पर, हमारी वेबसाइट के थ्रू भी आप सुन रहे हैं। एक दफ़ा फिर याद दिलाते चलें कि हम जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं वेस्ट लंदन और डर्बी में, लेकिन ऑनलाइन तो आप कहीं पे भी सुन सकते हैं जी, दुनिया के किसी भी हिस्से में। अगर आप डिस्कशन आवर में फ़ोन करना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं तो ज़रूर टेलीफोन कीजिएगा 01274-3066666 पर। हम इस एंड पे आपकी कॉल रिसीव करेंगे और आपको ऑन एयर ले जाएंगे। सुनते रहिएगा सनराइज रेडियो, हिट ऑफ द आवर।
5: Hit of the Hour, brought to you in association with Bellevue Residences. Discover stunning 4, 6 and even 8-bedroom homes. Call 0127-428-8252.
6: Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio. Hit of the Hour.

0: बुलबुला।
1: जी सामीन, पानी द बुलबुला गीत आपने सुना, उम्मीद है एंजॉय किया होगा। हमारे साथ मौजूद हैं एक हमारी कॉलर, आयशा उनका नाम है, और वो उन्होंने फ़ोन करके कहा कि वो याद के हवाले से कुछ अशआर सुनाना चाहती हैं। तो बात हो रही है यादों की, आपके ख्यालात, आपकी थॉट्स का इंतज़ार है कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, कि पुरानी यादों को साथ लेकर चलना चाहिए, उनको भूल जाना चाहिए, या उनसे सबक सीखना चाहिए और उनको याद रखना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो लेकिन याद के हवाले से हमें अशआर सुनाएंगी आयशा। हेलो आयशा, अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज़ आ रही है?
2: जी वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? मुझे आवाज़ आ रही है आपकी, आप सुना ठीक है?
1: जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप याद के हवाले से क्या कहना चाहेंगी? किसी की या कोई भी पुरानी यादें, समटाइम्स ऐसा होता है किसी का बचपन दुखी होता है, उनको यादें, पुरानी यादें तंग करती हैं, किसी की जवानी में या ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात हो जाते हैं। ऐसी भी मेरी कुछ सहेलियां हैं जानने वाले, जिनके बचपन में पेरेंट्स चले गए या माँ या बाप, उनके पास बुरी यादें भी हैं, अच्छी यादें भी होती हैं, तो यादों का कॉम्बिनेशन एक होता है। तो आपका क्या ख्याल है कि किस तरह से यादें आपको कहाँ ले जाती हैं? आप शायरी के हवाले से बताना चाह रही थी।
2: जी मेरी बहन, में कुछ अशआर लिखी है ना, तो याद तो हर गुजरा हुआ लम्हा, हर गुजरा हुआ पल की याद बन जाता है।
1: बिल्कुल,
2: तो मीनिंग जो हम बात कर रहे हैं ये भी 2 मिनट बाद याद बन जाएगा, 2 सेकंड बाद। तो याद तो अच्छी बुरी होती है, तो याद के हवाले से कुछ अशआर हैं जो मैं सुनाना चाहूंगी, आई होप सब सुनने वालों को और आपको पसंद आएंगे।
1: जी जरूर।
2: गुजरते वक्त के साथ सब भूल जाएंगे, उसे बुला देंगे। गुजरते वक्त के साथ सब भूल जाएंगे, उसे बुला देंगे, क्या याद करेगा, याद उसकी भी कहीं दूर दफना देंगे।
1: वाह,
2: कितना रोए कितना याद किया, दिल की बात कभी ना जुबान पर लाएंगे, उनके लिए अजनबी हो जाएंगे, उनको अजनबी कर देंगे। जिन राहों पर कभी हम चले थे, उन रस्तों पर जाना हम छोड़ देंगे। बेवफा सितम कर वो हमेशा के लिए दिल से निकाल देंगे, पछतावे की आग में जलने की सजा उम्र भर की उसे देंगे।
1: ओहो,
2: आगाज मोहब्बत तो उसने किया था, आखिरी अंजाम उसे हम देंगे। दर्द दिल की तड़प क्या होती है, तभी समझ पाएंगे, मान जब सब तोड़कर हम उन्हें खास से आम कर देंगे। ख्वाब जो देखे थे कभी मिलकर, वो सब चला देंगे, गुजरे वक्त के साथ सब भूल जाएंगे, उसे भुला देंगे। तो ये मेरी शायरी थी।
1: बहुत खूबसूरत शायरी आयशा, आपने बहुत अच्छा लिखा याद पे, और आपने जो मेरा क्वेश्चन था उसको भी एड्रेस किया इसमें, कि आप समझते हैं कि वही बात होती है, किसी शख्स की याद होती है, किसी वाकये की याद होती है, जो आपके साथ कुछ हुआ होता है, कोई ऑब्जर्वेशन, कोई एक्सपीरियंस, उसकी याद होती है, और किसी शख्स की भी याद होती है। तो आपको अपने रिश्ते भी याद आते हैं, बुज़ुर्ग याद आते हैं, कोई बिछड़ जाता है वो याद आता है। तो आपने जिस तरह से अब शायरी की ज़ुबान में उसको पोर्ट्रेट किया है बहुत ही खूबसूरत तरीके से, कि हम भुला देंगे और उसको ख़ास से आम कर देंगे, इसमें बहुत पावरफुल, बहुत पावरफुल है। मैंने आपकी पुरानी भी सुनी है कुछ शायरियाँ, लेकिन यू आर गेटिंग बेटर एंड बेटर, वेल डन, बहुत अच्छा लिखा है आपने याद के हवाले से।
2: बस मैं आप सब की दुआओं और मेरे रब का करम है कि मेरी शायरी में इतनी अल्लाह ताला ताकत और हुस्न दे रहा है मेरी शायरी को।
1: वाह, बहुत,
2: अगर वक्त हो तो मैं सुनाना चाहूंगी जो आज लिखी है।
1: जो आज लिखी है वो याद के हवाले से है?
2: हिजर है, दुखी है, मोहब्बत है, सारा कुछ है।
1: ओ अल्लाह की बंदी, हम पहले ही बड़े दुखी हैं। नहीं, अभी टाइम थोड़ा कुछ ऐसा है कि कमर्शियल ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, और याद के हवाले से जो आपने कमाल किया है ना, बस हमें उसको फिलहाल याद रखने दें, और नेक्स्ट टाइम आपसे सुनेंगे जो आपने आज लिखी है, या आप मुझे अलग में फ़ोन करके सुनाइएगा, और ज़रूर सुनाइएगा।
2: चलो ठीक है फिर।
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत खूबसूरत अशआर आपने पेश किया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू आयशा। اللہ حافظ. جی سامعین, یہ تو تھیں ہماری کالر عائشہ, اور انہوں نے بہت ہی خوبصورت یاد کے حوالے سے شعر سنائے. تو ٹاپک بھی ہمارا آج کا یہی ہے کہ یاد, آپ اپنی یادوں کو کس طرح سے مینیج کرتے ہیں, بھولنا چاہتے ہیں, یاد رکھنا چاہتے ہیں. کئی لوگ واقعات کو بار بار یاد کر کے اپنے آپ کو پھر اس سچویشن میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے, یہ ہمیں ڈیمیج کرتا ہے یا ہمیں سپورٹ کرتا ہے یا ہمیں اور مضبوط کرتا ہے. آپ کی خوبصورت خیالات کا انتظار رہے گا. ٹائم چیک کرتے ہیں اور کمرشل بریک کی جانب بڑھتے ہیں.
0: سن رائز ریڈیو, یور ساؤنڈ ٹریک, یور ٹائم چیک.
1: اس وقت ہماری اسٹوڈیو کی گھڑیاں بتا رہی ہیں کہ ہوا چاہتے ہیں 1:15, 15 minutes past 1. بڑھتے ہیں کمرشل بریک کی جانب, ملتے ہیں اس کے بعد. سن رائز ریڈیو. بہن, تم نے شادی پر دلہن کا زیور دیکھا تھا؟ اتنے پیارے ڈیزائن تو میں نے کہیں نہیں دیکھے. پتا نہیں کہاں سے بنوایا ہوگا, اتنا خوبصورت سیٹ اور چوڑیاں.
3: میں جانتی ہوں, انہوں نے سارا زیور صوفیہ بہن کی صوفی جیولرز سے بنوایا ہے. شادی میں ہر کوئی زیور کی تعریف کر رہا تھا.
1: صوفی جیولرز, وہ کہاں ہے؟
3: صوفی جیولرز, 119-2121 اوکلین پراٹفٹ 9, ٹیلیفون 01274-056-014. صوفی جیولرز.
4: Are you a business looking to make a real difference across our region? The Racial Equity Networking Dinner, REND Leeds Bradford, is seeking sponsors for its not-for-profit event on Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford. Connect with influential leaders from business, education and public service. Raise your organization's profile and demonstrate your commitment to race equity, inclusion and opportunity. For sponsorship opportunities, contact Shaheen today on 0770 6923 788. Official radio partner, Sunrise Radio.

साथियों सामिन, हम वापस आपकी खिदमत में हाजिर हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। इससे पहले हमने आयशा जी से बहुत ही खूबसूरत याद के हवाले से शायराना कलाम सुना। अगर आप हमें टेलीफोन करना चाहते हैं और यादों के हवाले से बात करना चाहते हैं कि यादों को साथ रखना चाहिए, यादों को छोड़ देना चाहिए, यादों से सबक सीखना चाहिए और किस तरह से अपने ब्रेन में, अपने दिमाग में हम अपनी एक्सपीरियंसेस, पास्ट एक्सपीरियंसेस और अपने ऑब्जर्वेशंस को मैनेज करें कि वो हमें डैमेज भी ना करें और हम उससे सबक भी सीखें और वो हमें पहले से ज़्यादा मजबूत, पहले से ज़्यादा निखरा हुआ, पहले से ज़्यादा मुहज्जब, पहले से ज़्यादा नॉलेजेबल, पहले से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड, जो कि मुश्किलों और मुसीबतों को लड़ना जानता हो, मुश्किल और मुसीबतों से लड़ना जानता हो, हालात को मैनेज करना जानता हो। ये जो यादें होती हैं, जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये हमें बना देते हैं ऐसा ही। लेकिन इसके बरक्स ऐसा भी होता है, अपोजिट टू दैट, कि सम पीपल कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो यादों को लेकर दुखी होते रहते हैं, वो अपने आप को डैमेज करते रहते हैं, वो अपने आप में डिप्रेशन की हद तक चले जाते हैं। तो ये हमारे अपने हाथ में होना चाहिए। मैंने बहुत ही एक खूबसूरत बात पढ़ी कि ट्रेन योर ब्रेन टू थिंक द वे यू वांट टू डू इट, यानी कि अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को हम खुद ट्रेन कर सकते हैं कि हमने किस तरह सोचना है, हमें किस तरह से कंस्ट्रक्टिव थॉट्स रखनी है। बहुत सी यादें होती हैं जो हमें दुखी कर देती हैं, बहुत सी यादें होती हैं जो हमारी जो हम काम कर रहे होते हैं उससे हमें डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं। तो आप इसको कैसे मैनेज करना चाहेंगे? अगर आपके ख्याल में कोई ऐसी बात है जिससे हमें फ़ायदा हो सके तो ज़रूर हमें फ़ोन कीजिएगा 01274 306666 पर। तब तक सुनते हैं ये खूबसूरत संगीत, हमारे साथ रहिएगा।

जी वेलकम बैक। आपने गीत सुना यादों की बारात, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, क्योंकि यादों की होती है ना वो बारात ही होती है। कहते हैं कि यादों का अबदी सफ़र है, अगर मुमकिन होता तो मैं बचपन के उस घर में एक रात फिर गुजार लेता, मगर कुछ दरवाजे सिर्फ यादों में खुलते हैं। अगर मुमकिन होता तो मैं बचपन के उस घर में एक रात फिर गुजार लेता, मगर कुछ दरवाजे सिर्फ यादों में खुलते हैं। हम जितना भी आगे बढ़ जाएं, हमारे अंदर का एक हिस्सा उसी पुराने घर के किसी कोने में कैद रहता है। वो घर अब मादी तौर पर चाहे किसी और की मलकियत हो या मस्मार हो चुका हो, लेकिन हमारे दिल के कोने में वो हमेशा वैसा ही आबाद रहेगा। मकान छूट जाते हैं, लोग बिछड़ जाते हैं, लेकिन यादों का वो दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, जहाँ जब चाहें हम खामोशी से कदम रख सकते हैं, बगैर किसी दस्तक के, बगैर किसी इजाज़त के। क्या ख्याल है, ऐसा ही है ना? तो सामिन, बढ़ते हैं अपने अगले गीत की जानिब, और फिर इसके बाद होती है आपसे दोबारा मुलाकात।

0: क्या आप अपनी अंग्रेजी बेहतर करना चाहते हैं? क्या आप अपनी मैथ्स बेहतर करना चाहते हैं? शिपली कॉलेज आपकी मदद कर सकता है। शिपली कॉलेज मुफ्त में इंग्लिश मैथ्स ESOL कोर्सेज, चाहे आपको नौकरी हासिल करना है या आपको सिर्फ एतमाद महसूस करना है, हम आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। बहुत से कोर्सेज अहलियत की शराइत पर होने पर मुफ्त हैं। मज़ीद मालूमात के लिए शिपली कॉलेज पर वेबसाइट जाएं।
1: क्या आप किसी खास तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं तो उसे जिना रेस्टोरेंट ब्रेडफर्ड में मनाएं।
2: बड़ी तकरीबात के लिए जिना मार्की में 150 मेहमानों की गुंजाइश है। मेहंदी, निकाह, सालगिरह और खानदानी जश्न के लिए बेहतरीन।
1: छोटी गैदरिंग के लिए जिना इवेंट सुइट में 50 मेहमानों की गुंजाइश है।
2: मौका कोई भी हो, लजीज खाने और अपनों के साथ अपनी खुशियों को यादगार बनाइए। जिना रेस्टोरेंट, लीड्स रोड, ब्रेडफर्ड।
1: बुकिंग्स और मज़ीद मालूमात के लिए कॉल करें 01274-733-732। जिना रेस्टोरेंट, हर मौके को बनाए खास।

0: जी हाँ, हंसो और हंसाया करो, क्या ख्याल है? हंसना और हंसाना ही चाहिए। हमारी एक बात हुई बहुत ही प्यारी कॉलर से, वो अपना नाम नहीं बताना चाहती, तो उन्होंने याद के हवाले से बात की कि यादें जो होती हैं हम उनको ना भी जहन में रखें, वो हमें बदल देती हैं। जो वाक्यात होते हैं हमारी ज़िंदगी के, वो हमें बदल देते हैं। ये बात तो वाकई है, जब हम कोई एक्सपीरियंस कर लेते हैं या फिर हम कोई ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं या कोई हमसे बिछड़ जाता है या कोई ख़ास वाक़या हो जाता है हमारी ज़िंदगी में, वो हमें चेंज कर देता है। तो उन्होंने बहुत ही सही बात की कि बहुत अरसे बाद कोई आपका पुराना दोस्त मिले और वो आपको कहे, हाँ तुम पहले जैसे नहीं रहे या तुम पहले जैसी नहीं रहीं, तो जो एक सफ़र आपने उस अरसे में तय किया होता है वो आपको थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके बदलता जाता है और आपको एहसास भी नहीं होता। बहुत सही बात की आपने बहन, और मैं आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूँ। इस हवाले से एक छोटी सी स्टिलिंग राइट्स की एक पोइम सी है, कुछ ऐसी है, आई एम नॉट द सेम पर्सन एज आई वॉज लास्ट ईयर, कि मैं वो सेम पर्सन नहीं हूँ जैसे मैं पिछले साल था। आई एम नॉट द सेम पर्सन आई वॉज लास्ट ईयर, नॉट बिकॉज समथिंग बिग हैपेंड, इस वजह से नहीं कि कुछ बहुत बड़ा वाकया हो गया है, बट बिकॉज 100 स्मॉल थिंग्स चेंज्ड मी स्लोली। छोटी छोटी चीज़ें, कई छोटी छोटी चीज़ें, हंड्रेड्स ने मुझे आहिस्ता आहिस्ता बदल दिया है। आई एम नॉट द सेम पर्सन आई वॉज लास्ट ईयर, नॉट बिकॉज समथिंग हैपेंड, समथिंग बिग हैपेंड, बट बिकॉज 100 स्मॉल थिंग्स चेंज्ड मी स्लोली, द वे आई थिंक, द वे आई ट्रस्ट, द वे आई चूज एंड हु आई चूज एंड हु स्टेज। ग्रोथ isn't loud, ये जो हमारी past experiences की growth होती है ये loud नहीं होती, बहुत एकदम से बड़ा change नहीं होता। Growth isn't loud, it's just becoming someone your past self needed। जिसके साथ ही हमारी कॉलर मौजूद है यास्मीन, लेकिन हमने ब्रेक पर भी जाना है तो यास्मीन से बात करते हैं और इनको फिर होल्ड पे करते हैं और फिर हम ब्रेक पे जाके फिर बाकी बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम यास्मीन।
1: वालेकुम
0: अस्सलाम, कैसे हैं? ठीक है।
1: वालेकुम सलाम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है?
0: जी मुझे आपकी आवाज़ अब बहुत अच्छे से आ रही है। कैसे हैं यास्मीन आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, सब ठीक ठाक।
0: चलिए,
1: वो जो आपने टॉपिक रखा हुआ है इसके बारे में मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ
0: यास्मीन। बहुत बहुत एहतराम के साथ, ऐसा है कि मुझे चंद सेकेंड्स में ब्रेक पे जाना है और फिर मैं आप से बात सुनूंगी, लेकिन मैं आपको लाइन पर ही रखूंगी, आप माइंड तो नहीं करते?
1: हाँ जी, नहीं बिल्कुल नहीं।
0: चलें ठीक है, फिर ऐसा करते हैं, मैं टाइम चेक करती हूँ, हम ब्रेक पे जाते हैं और फिर ब्रेक से वापस आके आपसे बात करते हैं। ठीक है,
1: ओके, थैंक यू सो मच।
0: ओके, सबसे पहले कर लेते हैं टाइम चेक। यास्मीन हमारे साथ मौजूद हैं और फिर हम इनसे करेंगे बात।
2: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: जी, टाइम हुआ चाहता है 1:40, क्योंकि हमारी अभी ब्रेक है और ये मेरे ख्याल है अजान ब्रेक है, इसलिए फिर थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। हम ये सुनते हैं और फिर हम आपसे करते हैं दोबारा बात। सुनते रहिए सनराइज़ रेडियो।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: जी सामिन, सॉरी ये गीत हम आपको पूरा फिर सुनाएंगे। पहले हमारे साथ मौजूद हैं हमारी बहुत ही अच्छी कॉलर यास्मीन बहन, और वो भी कुछ यादों के हवाले से बात करना चाहेंगी। बहुत देर से हमारे साथ वो होल्ड पर थी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम यास्मीन। ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो माजरत, आपको इतनी देर होल्ड पर रखा, और उसके बाद थैंक यू कि आपने पेशेंस से, बहुत ही तहम्मुल से इंतजार किया।
1: हम आपके साथ हैं, आपको साथ होना चाहिए। तो जाहिर सी बात, आप इतनी इतनी प्यारी बातें करते हैं सब लोग। सबसे पहले तो मेरी तरफ से सब टीम को अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सब ठीक है?
0: वालेकुम अस्सलाम तमाम टीम की तरफ से और मेरे सुनने वालों की तरफ से है, अल्लाह का शुक्र। आप बताइए कि यादों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी?
1: यादों के बारे में अगर मैं कहती हूँ कि मैं लिखने बैठती हूँ तो पेपर कहीं के कहीं खत्म हो सकते हैं, लेकिन यादों की यादें नहीं खत्म हो सकती। तो कुछ तो ऐसे है कि मैं कहती हूँ कि कुछ जो आप कह रही थी पहले के कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि जिनको देख के बंदा वो कहता है कि बंदा ये आप तुम वो नहीं रहे, लेकिन हम कहते हैं कि हम उनको तसल्ली के लिए कहते हैं कि हम वही हैं, वही हैं। हम कभी बदले थे ना बदले हैं ना बदलेंगे कभी। ठीक है, लेकिन यह है कि हालात इंसान को कुछ ऐसे बना देते हैं कि देखने वाले को फील होता है कि ये बदल गया है। लेकिन ऐसा नहीं होता, असल में बंदा वही होता है। यादें भी रहती हैं, यादें कुरेद के फेंकने से भी कभी खत्म नहीं होती। जो पुरानी यादें हैं ना, कुछ ऐसा ऐसे भी होती हैं, जैसे एक पेरेंट्स को ही आप ले लें, हमारे पेरेंट्स जो होते हैं वो हमारी जिंदगी में एक अहम रोल अदा करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पेरेंट्स में से कोई एक या दोनों इस दुनिया से गुजर जाते हैं तो क्या हम उनकी यादों को भुला देते हैं? कभी ऐसा हुआ है? कभी
0: नहीं, कभी नहीं हुआ,
1: नहीं। और कभी हम चाहें भी तो ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए कुछ यादें ऐसी भी होती हैं जो हमारी जिंदगी का एक अहम मकसद होती है। उन यादों के सहारे हम लोग अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं। और कुछ दोस्त वगैरह भी ऐसे होते हैं जो हमारी जिंदगी में आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनके साथ अच्छा गुजरा हुआ वक्त पल पल पल हमें हमेशा याद रहता है।
0: हाँ, यादें शख्सियत की भी होती हैं, जिसमें हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, हमारे सिबलिंग्स होते हैं, कुछ ऐसे लोग जो हमसे बिछड़ जाते हैं, ये शख्सियत की याद है। एक यादें होती हैं जो वाकयात की होती हैं, जो हमारे साथ गुजरे वाकयात या हमने ऑब्जर्व किए वाकयात वो होते हैं। कोई यादें होती हैं किसी के साथ की, छोटी छोटी सी यादें होती हैं।
1: लेकिन जो छोटी छोटी यादें भी होती हैं, बार दफा हमें इतना टॉर्चर करती रहती है ना कि हम अंदर से टूट जाते हैं।
0: ये तो है,
1: ऐसा भी होता है। छोटी छोटी यादें भी हमें रुला देती हैं, बार दफा हमारी जिंदगी का एक मकसद होता है, जो जीने का मकसद होता है। हम बार दफा खुश रहना चाहते हैं, लेकिन हमारे फेस पे खुशी होती है, लेकिन हमारे अंदर से वो खुशी नहीं पहुंचती।
0: वो डैमेज कर जाते हैं ना, कुछ चीज़ें होती हैं जो परमानेंट डैमेज कर जाती हैं। लेकिन यास्मीन, आप इतनी अच्छी बातें कर रही हैं तो मेरा दिल चाह रहा है आपसे ये पूछूं कि जब हमें यादें अच्छी या बुरी हों तो हम उनको कैसे मैनेज करें अपनी ज़िंदगी में, कि हम ज़ाहिर है एक फंक्शनल इंसान भी बने, हम मुआशरे के लिए फ़ायदा मंद इंसान भी बने। ये नहीं कि अब पुरानी यादें लेके हम रोते ही रहें बैठ के और हम किसी को फ़ायदा ना पहुंचा सकें, बल्कि अपनी ज़ात को भी फ़ायदा ना पहुंचा सकें। हाउ टू मैनेज दैट, कि किस तरह से मैनेज किया जाए अपनी यादों को और अपनी परेशानियों को। परेशानियाँ यादों के हवाले से, बाकी तो ज़ाहिर हर इंसान के हर ज़ीरो के साथ हैं इश्यूज़, तो लेकिन यादों को कैसे मैनेज किया जाए?
1: लेकिन ऐसा है ना कि मैं कहती हूँ कि हमेशा बंदे को हमेशा हमेशा आप खुशियां बांटें। ठीक है, छोटी छोटी खुशियों में इन पार्टिसिपेट करें, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।
0: ये हुई ना बात, मैं इंतज़ार कर रही थी कि आप ये कहो, यानी कि बुरी यादें तो या कोई पुरानी यादें तो हमारे साथ रहती हैं, क्यों ना अच्छी यादें क्रिएट की जाएं, मेमोरीज।
1: बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए।
0: Exactly.
1: क्योंकि जब हम अच्छी यादें एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, अच्छे अच्छे लम्हात गुजारेंगे एक दूसरे के साथ, जब हमें वो याद होंगे ना, तो बेशक हम पुरानी यादों को ना दफन तो नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि हम आगे बढ़ सकते हैं।
0: हाँ, हम अच्छी यादें क्रिएट करें। हम जो हमारे बस में नहीं था वो तो हो गया अब, लेकिन खुद से हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी के लिए एक अच्छी याद बन जाएं, किसी के लिए कुछ हेल्प कर दें, किसी के लिए कुछ ऐसा कर दें कि वो हमें एक अच्छी याद के तौर पे याद करें,
1: अच्छे लफ्जों में याद करें।
0: Exactly.
1: जाहिर बात है हमें कुछ अच्छी यादें छोड़ के जाना चाहिए कि कोई भी बंदा हमारे साथ गुजरा हुआ पल भी हो वो उसके हमेशा याद रहे कि कोई बंदा था हमारी लाइफ में खुशी बन के आया था।
0: Exactly. जी हाँ, यानी कि हम हमारे हाथ में है, हम कैसे नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज कर सकते हैं। ब्यूटीफुल। और कुछ कहना चाहेंगे शाहिना?
1: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: सॉरी यास्मीन।
1: आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।
0: बहुत शुक्रिया पार्टिसिपेट करने के लिए और अपने ख्यालात हमारे साथ शेयर करने के लिए। बहुत ही खूबसूरत ख्यालात आपके। जज़ाकअल्लाह। थैंक यू। जी साइन, ये तो थी हमारे साथ हमारी बहुत ही अच्छी कॉलर यास्मीन। उनको गलती से मैंने शाहीन कह दिया, उम्मीद है आपने माइंड नहीं किया होगा। तो ऐसा है कि उन्होंने कहा खुशी की यादों की भी बात की और चेंज करने की भी बात की, सभी बातें बहुत खूबसूरत की। अगर आप फ़ोन करना चाहें तो चंद मिनट बाकी हैं प्रोग्राम के, आप फ़ोन कर सकते हैं जब यादों के बारे में बात करने के लिए ऑन एयर अगर आप जाना चाहते हैं। बढ़ते हैं एक गीत की जानिब और इसके बाद होती है आपसे मुलाकात।

0: जी सामिन, सुना आपने ये खूबसूरत सा गीत। और भाई चौधरी रुखसार साहब, आपकी कॉल आई, हमने अटेंड की, लेकिन स्ट्रेट वे स्क्रीन पे अजीब सी लाइंस आई और फिर आपकी कॉल गायब हो गई। आई एम रियली सॉरी, आपकी कॉल नहीं ले पाई। मुझे इस बात का मलाल है, आपकी बहुत ही खूबसूरत बातें होती हैं और जो कि हम नहीं सुन पाए, याद के हवाले से कि आपने कितनी अच्छी बातें करनी होंगी और जिसे हम और हमारे तमाम सुनने वाले महरूम रह गए। थोड़ी जल्दी फ़ोन करया करो ना, फिर जब टॉपिक शुरू होता है उस टाइम फिर नहीं इतनी होंदी जल्दी। फिर जब एंड ते कॉल होंदी है फिर उस टाइम फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसा है कि चलें, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक मुलाकात होती है और नेक्स्ट वीक ज़रूर हम कोशिश करेंगे कि हमारे साथ कोई मेहमान मौजूद हो, जो कोई डॉक्टर, कोई ऐसे मेहमान हो जो हमारे लिए फ़ायदे की बातें कर सकें। डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के अख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सुनने वालों का, जिन्होंने प्रोग्राम सुना, जिन्होंने हमारा साथ दिया, जिन्होंने फ़ोन करके बताया कि वो प्रोग्राम सुन रहे हैं। बहुत शुक्रिया। कई लोगों से फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई, बहुत शुक्रिया आपने इज़्ज़त बख्शी। जिन्होंने टेलीफोन लाइव कॉल्स किए उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चाहता हूँ कि मैं भूल जाऊँ तुम्हें और ख़ुद भी ना याद आऊँ तुम्हें, जैसे तुम सिर्फ एक कहानी थी, जैसे मैं सिर्फ एक फसाना हूँ। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। बाय। जी समय बढ़ते हैं खबरों की जानिब। इसके बाद होती है आपसे नेक्स्ट वीक मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।
1: From the Sky News Centre at 2, it's thought the costs of rebuilding parts of Nepal devastated by flash floods could run into the billions. The number of dead has climbed above 600, but thousands of people remain unaccounted for 3 days on. The floods were caused by part of a glacier breaking off high up in the Himalayas. Monica Newpain, a climate activist in Nepal, says she and her colleagues knew something like this could happen.
2: I have one fellow climate activist. She lost her house in this flood. And it's the same thing because we have been advocating about this for years and years. It was extremely disheartening.
1: The Archbishop of Canterbury says she's sad and shocked after a man died at a Christian festival in West Sussex yesterday. Six others were injured after a sign fell down near Stenning. 30 families of manslaughter victims have urged the Justice Secretary not to free their killers under the early prison release scheme in England and Wales. The government says the most dangerous criminals will be kept behind bars. Middlesbrough fans have held a minute's applause to pay tribute to two police officers killed in a head-on collision last weekend. PC Matthew Blades and PC Tom Clough died in the crash on the A66 near the town, alongside five young men. The Championship club say they wanted to show their appreciation for both officers. Elsewhere, Liverpool and Nottingham Forest are both looking for their first Premier League wins of the season. Live to Shane Pinnington at Anfield.
3: Where it's Liverpool 1, Nottingham Forest 2, and Alexander Isak had got the host back on level terms here. He tapped down Cody Gakpo's cross to cancel out Dan Ndoye's first half strike for the visitors. So Bosley just saw an effort go over two, but the visitors have just been given a penalty after Alisson found Nico Williams and Morgan Gibbs-White scored from the spot. It's Liverpool 1, Nottingham Forest 2.
1: Newly promoted sides Coventry and Hull City face off later, while Celtic look to put their Champions League disappointment behind them when they return to Scottish Premiership action at home to Falkirk. That's the latest. I'm Imani Rana.

गल है जी याद तो अपना कंट्रोल ही नहीं रहता है मैनू ओपल याद नहीं जब मैं पैदा होया मेरी पहली दिवाली या मेरा पहला खाया परौंठा मैनू याद नहीं पर दुनिया की सब तो मीठी आवाज जब मैं पहली बार सुनी वो पल मैनू अज भी याद है इन्ना सोहना चेहरा मैंने कभी नहीं देखा था जी

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Are you a business looking to make a real difference across our region? The Racial Equity Networking Dinner, REND Leeds Bradford, is seeking sponsors for its not-for-profit event on Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford. Connect with influential leaders from business, education and public service, raise your organization's profile and demonstrate your commitment to race equity, inclusion and opportunity. For sponsorship opportunities, contact Shaheen today on 0770 6923 788. Official radio partner, Sunrise Radio.

0: नफ्सेन ज़ायकातुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: Rishi's Vision presents Anand Murthy Guruma in London. Learn timeless yogic wisdom directly from the revered master. Join a three-day series of enlightening talks on Yog Sutras for realizing the true self, 11th to 13th September 2026. Life-changing sessions featuring profound talks, practical insights and powerful meditations at Hariben Bachubhai Nagrecha Hall, 202 Leighton Road, London, E151DY. On Friday 11th and Saturday 12th September, 6 p.m. to 8 p.m. and Sunday 13th September, 3 p.m. to 5 p.m. Free event. All are welcome. For more details, call AK Basra 07977201226. Mirdosh Kumar 07899055525. Gurkirit 07886545970. Usha 07931788062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

0: ते पैरन ये जुतियां ही कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Did you know radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent? It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, and Milton Keynes, with even more areas coming soon. And as we prepare to expand our coverage further, ask about our limited special advertising offer. Call 01274735043.

0: कफ्सन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30 दास, ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: Have you tried Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Caratino Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking and is great for making healthy and delicious family meals. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.
3: Something new is cooking at Jinnah Restaurant. Come and discover our exciting new menu, packed with even more flavors and dishes to enjoy. Try our signature favorites, including Kashmiri Dum Pukhat, Desi Fried Fish, Desi Style Chuza, and Namkeen Gosht. Plus, discover our new lunch menu with delicious dishes at great prices. Bring your family and friends and experience the new menu today. Jinnah Restaurant, 109 Leeds Road, Bradford. To book, call 01274-733-732. Jinnah Restaurant. Tradition, taste, and something new.

राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट परे थम जवान पीछे से गए

0: ते पैरन ये जुतियां ही कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Want your business to reach more customers and stay front of mind? Advertising with Sunrise Radio. Connect your brand with a loyal, engaged audience across Yorkshire and our growing DAB network. Radio builds trust, increases awareness, and gives your business repeated exposure throughout the day. And right now, as Sunrise prepares to expand even further, we're offering a limited-time special advertising package. Promote your business today with Sunrise Radio. Call 012-74735. 043

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
3: Hold on, miss. 2055? We'll be grown-ups by then.
4: We're not having that, are we?
3: No. Oi, hear that? It's water and cans.
5: And fix those drips and drops.
6: And take shorter showers, yeah?
7: Because when we work together,
8: it all adds up.
9: So come on, you lot. Search Let's Save Water.

0: for a quality home to rent.
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सारिफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है। यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात और मजीद इलाकों में बहुत जल्द। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 012-747-3504-3

0: गलियां गलियां घूमी ते पैरन जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नतीला सिर्फ 2 पौंड ना कन सलाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Want to speak better English? Want to improve your maths? Want to earn more money? Shipley College can help. Shipley College's free English, ESOL and maths courses. Whether you want to find work or simply feel more confident, we're here to help. Many courses are free, subject to eligibility. Go to the Shipley College website.
3: Something new is cooking at Jinnah Restaurant. Come and discover our exciting new menu, packed with even more flavors and dishes to enjoy. Try our signature favorites, including Kashmiri Dampukhat, Desi Fried Fish, Desi Style Chooza, and Namkeen Gosht. Plus, discover our new lunch menu with delicious dishes at great prices. Bring your family and friends and experience the new menu today. Jinnah Restaurant, 109 Leeds Road, Bradford. To book, call 01274-733-732. Jinnah Restaurant, tradition, taste, and something new.

यूजलेस। ओके।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: ऋषि's विजन प्रेजेंट्स आनंद मूर्ति गुरुमा इन लंदन। लर्न टाइमलेस योगिक विजडम डायरेक्टली फ्रॉम द रिवर्ड मास्टर। जॉइन अ 3-day सीरीज ऑफ इनलाइटनिंग टॉक्स ऑन योग सूत्रास फॉर रियलाइजिंग द ट्रू सेल्फ, 11th to 13th September 2026। लाइफ चेंजिंग सेशंस फीचरिंग प्रोफाउंड टॉक्स, प्रैक्टिकल इनसाइट्स एंड पावरफुल मेडिटेशंस एट हरिबेन बच्चूभाई नगरेचा हॉल, 202 लेटन रोड, लंदन, E151DY, ऑन फ्राइडे 11th एंड सैटरडे 12th सेप्टेम्बर 6 PM to 8 PM and Sunday 13th September 3 PM to 5 PM. Free event, all are welcome. For more details call AK Basra 07977201226, Mirdosh Kumar 07899055525, Gurkirit 07886545970, Usha 07931788062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनुवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: गलियां गलियां घूमी ते पैरां दी जुत्तियां भी कसी गईं पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
3: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
2: चाचा केड़ा चाचा?
3: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्के नती लाए सिर्फ 2 पाउंड ना कानस लाने ना 1 पाउंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने
2: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता
3: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935

0: song, I got my radio. Got the greatest station, radio station in the world. Sunrise Radio.
1: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
2: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
1: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
2: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923788.
3: Official media partner, Sunrise Radio.
4: गलियां गलियां कुमी ते पैरां नी जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नी मिलिया
5: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना
4: चाचा केड़ा चाचा
5: चाचा ज्वेलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नी कोई मजदूरी नी ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने
4: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता
5: चाचा ज्वेलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935

0: looking for a quality home to rent.
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सारिफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है। यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात और मजीद इलाकों में बहुत जल्द। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 012-747-35043।
3: Ladies and gentlemen,

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: गलियां गलियां कुमी ते पैरां नी जुतियां वी कसी गियां पर सस्ता सोना नी मिलिया।
3: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
2: चाचा केड़ा चाचा?
3: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्कन तीला है सिर्फ 2 पौंड ना कन्न सलाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नी कोई मजदूरी नी ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
2: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
3: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।

0: part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
1: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
0: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
1: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
2: Official media partner, Sunrise Radio.
3: गलियां गलियां कुमी ते पैरां नी जुतियां ही कसी गियां पर सस्ता सोना नी मिलिया
4: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना
3: चाचा केड़ा चाचा
4: चाचा ज्वेलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्कन तीला है सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नी कोई मजदूरी नी ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने
3: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता
4: चाचा ज्वेलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935